0: 10 years of BC1 already in India.
1: This is the war, you know. The stakes are high here.
2: हर बैटल में आपको हंगर मिलेगा. कल्चर ही वही है. अगर बैटल ही नहीं होगा तो फिर ब्रेकिंग बचा ही नहीं ना.

0: सी।
1: क्या हुआ बे, ऐसा क्यों देख रहे? स्टार्टिंग में साइबर कैफे जाते थे तो लिखते थे कि क्रेजी डांस, बहुत ज्यादा फैसिनेट करता था मेरे को कि लाइक पीपल आर जस्ट लाइक फ्लाइंग लाइक यू नो इन द एयर, दे आर लाइक ट्विस्टिंग एंड टर्निंग एंड लैंडिंग ऑन देयर फीट। वीडियो के थ्रू इंट्रोडक्शन हुआ मेरा, मैंने सब डॉक्यूमेंट्री में बोला ये चीज, वीडियो के थ्रू इंट्रोड्यूस किया।
2: हाँ, वीडियो में ही देखता था वो। हाँ, वीडियो में देख के ही किया है सब।
1: वो रिसर्च किया मैंने बहुत ऐसा कि कहाँ से आता है, लाइक क्या टाइप के, लाइक यू नो क्या एनवायरमेंट क्या रहता है, बैटल क्या होती है। और मैं बहुत प्रैक्टिस करता था ब्रो, लिटरली मैं दिन रात एक करता था।
2: कॉलेज जाता नहीं था, कहाँ जाता, घर से बैग लेके जाता, कॉलेज जाता ही नहीं है
1: ब्रो। मैं एक एक माले पे चढ़ के बैक फ्लिप मार देता था।
2: हाँ,
1: लिटरली। She's never seen me dancing. Only time that she saw me dancing was 2019.
3: This is Red Bull BC One, the most prestigious B-boy, B-girl stage on the planet. You know the flying machine.
1: That was the first time when ever any Indian stepped on the world finals. मेरे लिए भी बहुत अलग प्रेशर था कि भाई मेरी मम्मी देख रही है। हाँ, इतने सारे लोग,
2: सब लोग बोलते थे ना अभी, मतलब फ्लैग मशीन आ रहेगा अभी, तो मैं आजू बाजू में सब बैठ, मैं मेरा बेटा है, बोला आपका बेटा है? मैं बोली हाँ मेरा बेटा है। बोले ये जो है ना इधर का स्टार तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे बेटे की वजह से ये सब हो रहा है।
1: मेरे को लगता है कि वो गिफ्टेड था कि वो ब्रेकिंग मेरे को मिला, और एक्चुअली मैं ऐसा मीडियम बन गया कि और उसको अलग लेवल पे लेके यार अपने कंट्री में।

मेरा नाम जो है ग्लिब, म्यूजिक कम करो। जैसे ग्लिब है वो डिफाइन करता है स्मूथ स्लिपरी मूव्स, तो उसमें तीन चार मूव्स हैं। तो लाइक पहले मैं उसमें नमस्ते करती हूँ जब इंटरनेशनल जाती हूँ, नमस्ते एंड दिस पूरा ये चिल्ला लो। जैसे मैं स्लिपरी बताया तो मैंने खुद धक्का देके और घूमना।

ऐसा कुछ करके देन दीज मोमेंट्स, ये सब जो मेरे वो दिखाता है लाइक ये सब चीजें हो गई. मुझे यही बताता कि आप हर चीज हंसोगे. क्योंकि नाम इन्होंने दिया ही चिढ़ाते थे मुझे बहुत ज्यादा. दीज थिंग्स ऑल्सो जो मैं करती हूँ बैटल में, मैं अपने आप को मानती हूँ कि दो पर्सन है मेरे अंदर, एक सिमरन है और एक ग्लिब है. तो ग्लिब के दो मतलब है, अगर सिमरन का देखा जाए तो बहुत टॉकेटिव पर्सन जो कि मैं जनरली हूँ, और अगर ग्लिप का देखा जाए तो मेरे मूव्स डिफाइन करता है, स्लिपरी स्लीक बहुत स्मूथ.

0: Ochoa goes through the fans.
1: Big out, Bobby!
2: तेरे अंदर वो इतना हंगर था कि मुझे जीतना है जीतना है यार इस साल जीतना है तो इंजरी तो कुछ नहीं करना है 2023 से आप समझ सकते हो कि मेरी लाइफ चेंज हुई है रेड बुल से क्योंकि मेरे पास एक टैग लग गया कि रेड बुल DC1 विनर है यार ये
3: रेड बुल जीतना था कि इंटरनेशनल जाना था तो रेड बुल ही एक ऑप्शन था अगर वो जीतेंगे तो इंटरनेशनल जा सकते हो ना
4: तो मैं खाली एक कैब लेके वेन्यू पे पहुंच गया।

0: पहले तो जब देखा मैंने तो मेरे को पता ही नहीं था ये ब्रेकिंग है, क्योंकि हम लोग तो मतलब स्टंट काउंट करते हैं, एज स्टंट काउंट करते थे वो टाइम पे, वो एरा में जिसको आता था ब्रेकिंग उसका इज्जत करते थे लोग एरिया वाले। इज्जत मतलब अगर वो कोई बर्थडे में जा रहा है तो उसके लिए चेयर्स आ रहे, कोल्ड ड्रिंक्स आ रहा, केक आ रहा, सब ऑटोमेटिक चल के आ रहा है। तो मैं बोला मेरे को भी चाहिए इज्जत भाई, मतलब समझेगा। फिर मैं नेक्स्ट डे जाके उन लोग अप्रोच किया कि मेरे को भी करने का, तो वो लोग ने मार के भगा दिया, नहीं सिखाएंगे बोले। एक सेलिब्रिटी टाइप ऐसा घूम रहा हो, ऐसा कोई रैंडम आके बोलेगा मेरे को सिखाएगा क्या एक्टिंग, नहीं हो सकता ना, तो ऐसा भगा दिया मार के। फिर मैं उन लोगों को 2 महीना फॉलो किया दूर से, ऐसा 100 मीटर से ऐसा देख रहता था क्या क्या कर रहे, फिर अपने साइड जाके प्रैक्टिस करता था। एक टाइम पे 150-200 बी बॉय एक एरिया में, और अभी कोई है ही नहीं क्योंकि वो एरिया थोड़ा ऐसा था, डेडली था, तो सब लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए, लोगों को जॉब से ना था, कुछ लोग जेल में थे, कुछ लोग भाग रहे थे पुलिस से। तो गनी एग्जांपल, शफी, वसीम भाई, लोग सब लोग सेलिब्रिटी थे हम लोग के लिए। मतलब अगर वो लोग हम लोग के प्रैक्टिस प्लेस पे आ गए तो कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, चाहे 3 घंटा 4 घंटा सिर्फ देखेंगे सब। तो बस उन लोग के वजह से ही हम लोग को इतना हिप हॉप मालूम पड़ा।
1: मैं उसको बोला कि तूने एक चीज़ बहुत अच्छी बोला रे, मतलब कि वसीम भाई ये लोग बाकी लोग हमारे लिए सेलिब्रिटीज थे। अब भी मैं दूध लेके आया इसके लिए इसके घर पे।
0: टाइम बदलता है भाई।
2: फर्स्ट नॉलेज, उसके बाद में दूसरा कुछ।
1: थोड़ा मजाक मस्ती है, मैं थोड़ी खींच देते हैं मेरी, क्योंकि एज भी हो रही है मेरी। अगर मुझे कुछ नहीं होता है करने से, बोले भाई बस कर दो, हो गया। मेरा नाम वसीम है और मैं रॉकफिश से रिप्रेजेंट करता हूँ, और मेरी उम्र है 43 ईयर्स ओल्ड, और मैं वन ऑफ द फर्स्ट बी बॉय में से एक इंडिया में आता हूँ। प्रैक्टिस के लिए हम लोग बहुत दिक्कत होती थी, मतलब जगह नहीं मिल रही बिल्कुल भी।
3: यहाँ पे हम लोगों ने अपना फ्लोर बनाया था, हम लोगों ने खुद के पैसे से ये चीज़ बनवाई थी।
1: ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा फिशर एरिया है। प्रैक्टिस करके घर पे जाते थे, हम लोग की बॉडी से जो स्मेल आती थी फिश की, हर कोई गालियाँ सुनता था घर पे। 2011-12 बहुत अच्छा टाइम था, वो टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग की लड़ाइयाँ होती थी आर्टिस्ट लोग से, बीबोस लोग से, बैटल्स के अंदर हम लोग का झगड़ा हो जाता था।
4: नहीं नहीं नहीं भाई, ये सब नहीं कर सकते भाई, ये सब नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पे हिप हॉप के वजह से भाई, हिप हॉप हम लोग को ये सब नहीं सिखाता।
5: हो जाता है भाई, सीन रियल हो जाता है, लाइक यू नो बैटल थोड़ा इंटेंस हो जाता है कि यार।
1: एटीट्यूड क्या होता है, सामने वाला इतना डर जाए कि अपनी चीजें भूल जाए, एक एटीट्यूड होता है। नहीं, बाकी मैं ही हूँ खाली यहाँ पे।

0: reason you got the mass shaking like what?
1: कपड़ों से तो बहुत वो है इसको रोज जाना
2: क्योंकि हमारा ब्रेकिंग है फैशन के बारे में मम्मी मैंने मम्मी का शादी की ड्रेस को पहना तो मम्मी कितनी खुश होकर देखती रहती है उसको पूरे दिन जितना ब्रेकिंग को नहीं देखती उतना इन सब चीजों को देखती
1: शादी की बड़ी
2: तो मैं जैसे बता रही हूँ ना मम्मी आज 1 लाख लग रही है 1 लाख लोगों ने देख ली क्योंकि इनके लिए 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है 1 लाख लोगों ने वीडियो देखी फिर मैं बोलूँ मम्मी 1 मिलियन हो इतना इतना चला गया उतना चला गया तो मम्मी बहुत खुश होती थी सबसे ज्यादा जो मम्मी ने फेस किया है वो यही कि मेरे को मम्मी को फैमिली से पूरे आसपास के लोगों से बहुत सुनने को मिला है मेरे बारे में ये आपको पक्का आपका नाम डुबोएगी कहीं चल जाएगी घर छोड़ देगी
1: तो बैठना ही छोड़ दिया फिर लोगों को
2: मम्मी रोती थी मेरी बैठ के क्योंकि मम्मी मुझसे तो लड़ नहीं सकती क्योंकि मैं मम्मी को बता देती मम्मी कुछ भी गलत नहीं कर रही और मम्मी रोती थी कि मैं क्या करूं मैं सुन नहीं सकती अपने बच्चों के लिए इतना गंदा ये वो
1: ज्यादा लड़कियां तो करती नहीं लड़के ज्यादा वो है तो सुनने को बहुत मिलता था वो तो लेकिन मैंने सुना सबकी
2: जो लोकल बैटल होती थी उसमें साइफर में ज्यादा लोग होते नहीं थे 4-5 लोग खड़े होते थे तो मम्मी बोलती थी कि 10 लोगों के बीच में नाच के आ गई और पैसा इतना खर्च करके आ गई तो तू बड़ी बड़ी बैटल
1: छोटी छोटी बैटल सब अटेंड करती थी
3: This with the GG rap karu HR51 gang mera needy Friday se freaky FRIENDS mein main Phoebe let me be habibi
4: there were a lot of jams on small scale people used to like you know cypher a lot people used to like exchange a lot and it was very raw So breaking के बहुत सारे layers हैं. There's footwork, there's top rock, there's power moves, there is freeze. These are the core things जिसमें बाकी सारे चीज़ fit in होती है.

0: काफी मुझे ऐसा फील हुआ कि कंपटीशन था मेरा और मेरे को काफी भारी मूव करने पड़े. स्टार्टिंग में मेरे को हार्ड लगा था, बट मेरे को पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है मैं ब्रेकिंग क्यों कर रही हूँ. एंड देन आई मेड इट. Put your hands up so I know you're hardcore. Breaking, to be honest, बहुत hard है. Breaking कभी खत्म ही नहीं होती. मतलब उसमें सीखते जाओ, उसमें explore करते जाओ, खुद अपना character ढूंढ रहे हो, फिर power moves unlock करने में सालों लग जाते हैं. जितना आप सीखते जाओगे, hard पे जाओगे, उतना आपको injuries के chances है. कोई मैट नहीं वैट नहीं है, फ्लोर पे कर दिया, गिर गए, गर्दन पे लग गई, शोल्डर डिसलोकेट हो गया, कुछ ना कुछ नहीं इंजरी हो गई.
1: तो बेसिकली पहला मेरा लोअर बैक गया था, फिर उसके बाद शोल्डर टूटा था, फिर मेरा लिगामेंट गया, फिर अभी रिसेंटली वापस कॉलर बोन टूटा है. जहाँ पे प्रैक्टिस प्लेस मिल जाता वहाँ कर लेते. अभी नेहरू स्टेशन मिला, अगर कोई स्टूडियो ऑफर करेगा उधर भी जाके कर लेंगे, है कि नहीं? अपने को स्टूडियो मिलेगा, अपन स्टूडियो चल देंगे.
2: टाका दे, टाका. तो हम लोग बहुत टाइम से बहुत सारे वर्ड यूज करते आ रहे हैं, पर उसका कुछ वैल्यू नहीं है. जैसे बैटल में टाका दे, एकदम

0: there's just like a tiny balance to tip it, and then your hand goes all the way. Seeing him be like so emotional that he won, I think that was like a good moment for him.
1: Nice.
2: Make a grand entry.
3: Tell them, what's the most important thing of breaking?
4: What's the most important thing about breaking?
3: Yeah, the mic is on my chest.
5: Ben is the most important thing.
3: Yes!
6: Yeah, Ben is crazy. He's a very inspiring b-boy. A lot of Bangalore breakers are inspired by him, not me. I mean, I practice. I still lost in the first round. He didn't practice, but he still did really well. Every year he's like that only.
2: Please do not try this at home. Try this at your friend's home.
3: I'm not too serious when it comes to competition. I don't really want to be known as the best. If I win, I win. If I lose, I lose. I just want to be remembered as the guy who made people laugh, made people smile, the funny dude. I like doing funny moves.
7: मेरा ऐसा नेचर है कि मैं बहुत खुश रहने वाली हूँ इसी वजह से मेरे को लोगों से प्यार मिलता है कि जिस तरह से आप मूव्स को इतना इजीली दिखा देते हो ना कि लोगों का मन कर जाता है सीखने का या करने का अगर ब्रेकिंग से हटके मैं कुछ भी वो करती हूँ तो मेरे को इतना लव नहीं मिलता जितना मुझे ब्रेकिंग से मिलता है क्योंकि बाकी इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं आप देखोगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े हैं बट आपका डिफरेंट क्या है तो मेरा ब्रेकिंग है
3: आई टेक माई ब्रेकिंग टू अदर areas into other stages and platforms so when I model it's either just posing in clothes or it's dancing clothes so again I break I do graffiti I paint shoes and jackets so I customize for people I was able to like monetize on that people place orders and wanted me to paint some shoes on so that I painted so that's one of the jackets that I painted my doodle style I painted the sleeve of this jacket at the end it just depends on how you put yourself out there. I tell everybody, like, don't just break, do something on the side.
8: But this is how this federation is also working, like how we got opportunity to go outside, but still they are not giving us the money to go. Like, we have to book our own tickets to represent India. Yeah. Like, this is so stupid.
2: Yeah. उन लोगों कुछ फर्क नहीं पड़ता सही बात बोलूँ तो. अंकल उन लोगों कुछ पता ही नहीं है डांस के बारे में. हम लोग फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं. हम लोग के नजर में ओलंपिक रहते हैं. ना तो उसमें लेयर्स भी रहता है ना. समझ रहे हो मतलब अगर आपको एक साल में 11 कंट्री जाना है सेल्फ फंडेड आपका मिनिस्ट्री कुछ नहीं है आपका कुछ भी बैकअप नहीं है आपको आपका रेंट भरना है आप कैसे जा सकते हो मतलब आपको क्वालिफायर करना पड़ेगा ना ओलंपिक जाने के लिए सारी चीज अगर मैं सिमिलरली अगर करता था दूसरे कंट्री में 100% में ओलंपियन रहता था बिकॉज आई एम द बेस्ट बी बॉय इन इंडिया नो कैप
9: ऑन द वे लेट्स गो
2: हम लोग यूजुअली ऐसा ड्रीम करते हैं कि लाइक इंटरनेशनल लाइक यू नो वर्ल्ड में एंटर करना है हम लोग को देखना है वो एक्सपीरियंस करना है कि और लोग कैसे डांस करते हैं ये लोग तो हम लोग से भी ज़्यादा एक्सपीरियंसड है वो लोग हाईएस्ट ऑफ हाई लेवल पे कम्पीट करते
10: हम चले गए बाहरों
11: में मैंने स्टार्ट इसलिए किया था कि मेरे को एरिया में इज्जत मिले बहुत कुछ मिला है कपड़े पहनने का ढंग पासपोर्ट भर रहा है पैसा कमाना समझ में आ रहा है लोगों से बातचीत कैसे करना है वो ऐसा बहुत सारा चीज मिला मतलब जो भी अभी आज है सब ब्रेकिंग नहीं दिया
12: माझ्यावरती झळणारे विरोधक अपोजिट डजन या रॅपिंगच्या क्षेत्रात या वागाचं वजन
13: The Indian scene is just growing and it's stronger than some of the countries I've been to
14: I thought that the scene was a pretty similar level to the UK.
13: They just need a little bit like of guidance, maybe some ability to travel, and they could really do some damage worldwide.

0: Power Drive Machine.
1: मेरे पढ़ा लिखा नहीं है, अगर मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं अगर जॉब भी ढूंढूंगा तो मेरे को ऐसे कुछ भी मिलेगा, डिलीवरी का, वॉचमैन का, यही मिल सकता है, उसके ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। बट वो 15 साल में मैंने खुद को इतना डेवलप किया ना कि मैं इंडिया को कुछ 15 कंट्री रिप्रेजेंट कर चुका हूँ।
2: इतिहास बन गया है, थर्ड प्लेस।
1: मैं ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट में सिखा चुका हूँ। जो स्टार्ट करेगा उसके ऊपर है, डिपेंड इसके ऊपर करता है कि उसको क्या करना है।
3: पूरा लाइफस्टाइल है ये बेसिकली, और वो स्ट्रीट एम्पावर्ड है। आई डोंट थिंक कि हाई क्लास और लाइक यू नो पीपल कैन ऑल्सो, आई मीन दे कैन डू इट 100%, दे कैन नॉट लीव इट, यू नो दे लैक समथिंग इनसाइड।
4: जो अभी जो हमारा ब्रेकिंग है, अब जो यंग जनरेशन है उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। 10 साल बाद हम लोग ही ओजीज बन जाएंगे, हम लोग ही उनके लिए हिस्ट्री होंगे। जिनको मैं देखती आई थी, मैंने उनके बराबर पहुंची और फिर उनके आगे निकली, तो मैं अपने आप को मानती हूँ ऊपर। मैं चाहती हूँ और बिगर, एटलीस्ट उनके अंदर हंगर होगी इसको हराना यार, ताकि मेरे अंदर भी थोड़ा सा जागे, मुझे किसने हराया अगले साल मैं उसको हराऊंगी। बारहवीं इज लाइक माई ग्रेट कॉम्पिटिशन, क्योंकि हम लोग 4 साल से फाइनल्स में मिल रहे हैं हमेशा।
5: मुझे बारबी अच्छी लगती है, मतलब वो जिस तरह डांस करती है, जिस तरह वो मूव करती है, जिस तरह वो फ्लिप्स वगैरह मारती है, तो बहुत अच्छी लगती है। उनका काफ़ी चीज़ें हैं वो अच्छी लगती है। ऊपर से वो मुंबई से है, तो मुझे मुंबई बहुत पसंद है, मुझे मुंबई जाना है, तो अगर मैं जाऊँगी तो उनसे वहाँ पर ज़रूर मिलूंगी।
4: अभी तो बारबी घर जाके रहे, उसके बाद नहीं बारबी के घर जाके रहे।
6: Glib is like, I don't need to run, I can walk. You can see the difference with her and Barbie. Barbie's like very powerful and very fresh and new.
7: This is BC One India. The stakes are high here. But sometimes you just need to take a deep breath and just relax and just be in the moment.

0: turning local victories into global fame. What started as a forbidden passion in the heart of Lahore soon launched him onto the international stage. Against all odds, the boy who had nothing became a name known worldwide.
1: Arslan X.
2: The trophy goes to Pakistan. Amazing sportsmanship, but he has done it. Wow, amazing performance from the young knight.
3: Goes to grand finals. That is the seat. That is destiny.
0: Arslan trained endlessly, day and night, his focus sharp and his mind locked on one goal. But every time the Tekken World Tour Finals came around, fate seemed to get in his way, and the pressure of the world's expectations weighed heavy on him. Giving up comforts for just a few more hours of practice, Arslan pushed himself beyond limits. Yet, despite his determination, something always stopped him at the final hurdle.
4: First top 8 at a TWT final. He's got the spot.
5: मैं जो दो इवो जीत चुका था और मैंने सोचा कि यार ये भी जीत जाऊंगा इजी है जिससे पहले जीत तो इंसान गलतियां करते रहते हैं हम थोड़ा सा गुरूर में आ गया था थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं जीत जाऊंगा जो कि मैं फिर मुंह के बल गिरा मैं हार गया
6: When you become a very big thing, people are likely to find loopholes in your game.
7: Practice में थोड़ी सी इसने कुताही की।
5: आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, जबकि मुझे मैं realize करता हूँ कि आपको double मेहनत करनी पड़ती है अपने title को maintain करने के लिए।
8: तो तनी ये tension भी आ जाता है कि मैंने जीतना लेकिन नहीं हो पाता उससे।
9: असल में ज़रूरी नहीं होता कि एक इंसान हर दफ़ा जीतता रहे
10: अरसलान काफ़ी इमोशनल भी होता है कहता कि यार तुम्हारे पास टेकन वर्ल्ड टूर का टाइटल है मेरे पास ईवो पे टाइटल है
11: TWT finals has always eluded him.
12: The Tekken World Tour follows a different sort of format. So Arslan had difficulty understanding how that would work.
13: 이상하게 이제 파이널에 왔을 때 뭔가 굉장히 어려워하는 느낌이 이제 들었어요. 왜냐면 그때 플레이도 뭔가 아슬란이 뭐 평소에 하던 그런 느낌이 아니고.
5: 근데 이 दफा मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं जीतने के लिए और मैं इसलिए ज्यादा एक्साइटेड भी हूं क्योंकि लास्ट टूर्नामेंट है पूरे टेकन का. अगर मैं टूर्नामेंट जीत गया तो मैं हिस्ट्री बना लूंगा दुनिया के अंदर.
4: He is the greatest of all time without a doubt. Nobody has as many Evo titles as this man right here and he's done it again.
5: क्या कह रहा है कि अभी पास स्टिक मेरी गाड़ी में है।

0: गाड़ी में।
1: ठीक है।
0: दुआ करना। हाँ
1: फिर
0: मैं बैग में रहता हूँ उसके ऊपर जा रहा हूँ फिर मैं। ठीक है हाँ
2: चलो दुआ करना।
0: तीन घंटे बाद फ्लाइट है।
1: ठीक
0: है सो गया बीबी। हाँ चलो निकल रहा हूँ मैं गाड़ी खड़ी है। चलो ठीक है मम्मा
1: अच्छा
0: निकलता हूँ।

0: जब टेकन खेलना मैंने स्टार्ट की थी तब मैं कोई 7-8 साल का था और मेरे बिल्कुल घर के सामने हुआ करती थी शॉप गेम की, फ्रूट्स की दुकान थी ना, मतलब बाहर उसके फलों की दुकान थी और फलों की दुकान के अंदर जाके गेमें थी और गेमों में लाइन से कुछ 3-4 गेमें लगाई थी। पहले पे टेकन थी, फिर दूसरे में दूसरी मिशन गेम्स होती हैं जो बच्चे खेला करते हैं, इस तरह करके एक शॉप थी। तो अपने कज़न्स के साथ स्कूल से वापसी में जाया करता था गेम खेलने।
1: छोटा सा था तो वीडियो गेम में चले जाना, शुरू से इसको शौक था गेमिंग का ना।
0: लोग कहते थे कि अरसलान ना एक बच्चा आता है सबको हराता है, इस तरह करके थोड़ी एक इज्जत थी मेरी। वहाँ पे मुझे कोई नहीं हरा पाता था, मतलब वहाँ पे अगर 10 लोग आते थे रोज़ खेलने के लिए मेरी एज ग्रुप या मेरे से बड़े, तो मैं उनको ईजिली हरा लिया करता था। तो थोड़ा फेम मुझे मिलना स्टार्ट हो गया।
2: In the dim, smoky arcades, Arslan Ash began making a name for himself. But in Pakistan, gaming was still seen as a useless distraction, and arcades were thought of as bad places.
0: Even though I was very bad, I remember that one of my brothers was very तो वो मुझे बहुत मारा करते थे। उनके एक दफ़ा तो आर्केड सेंटर के अंदर जाकर मुझे बहुत मार पड़ी और मैं भागने की कोशिश कर रहा था कि मैं चला जाऊं कि मेरी बिस्ती हो रही है वहाँ पे, जो लोग मुझे इज्जत करते थे वो कल को मैं अगर गया तो मेरी बिस्ती करेंगे वो, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जाके मारा। तो उसके बाद मुझे एक दो दिन मैं गया भी नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, फिर मैं फिर बेशरम था, मैं जाना भी था, मैं चला, लेकिन थोड़ी देर बाद नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन फिर दोबारा 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ, मार पड़ी बहुत ज़्यादा अब्बू से भाइयों से। तो
1: मैं जाके ले आती थी, वो रहती थी मैं कि उसको मारी ना पड़ जाए, तो मैं ना इसके पापा के यहाँ से पहले इसको घर ले आओ।
3: अरसलान ने भी काफ़ी मतलब कि मार खाई है सबने। मुझे जब घर से निकाल देते थे तो मैं अरसलान की तरफ आता था,
4: हम छुप छुप के खेलते थे, हमें मार भी पड़ी है काफ़ी। हमने एक दूसरे से मिलना है, गेमिंग में जाना है, तो छुप छुप के जाते थे कि तुम्हारे घर वालों ने कहा है हमारे बच्चे से ना मिले, ये उसे गेमिंग में लेके जाते हैं।
3: निकाल देते थे हमें घर वाले, उनके पास आखिरी हल यही होता था कि इनको निकाल दें, तो हम खुश हो जाते थे, ठीक है निकाल दिया अब सारा दिन गेम खेलेंगे।
0: आई थिंक उनको गेमिंग पसंद नहीं थी क्योंकि माहौल अच्छा नहीं था वहाँ पर। वहाँ पर जिस तरह मैंने बताया कि वहाँ पर लोग अच्छे नहीं आया करते थे, बहुत बुरे लोग आया करते थे। अब तो ऐसे ही नहीं है, अब तो अच्छे बन चुके हैं क्लब्स, लेकिन तब लोग बहुत बुरे होते थे वहाँ।
2: Arsalan's obsession with gaming was hard for his family to accept. For many Pakistani parents, gaming as a career was unimaginable, and the pressure to follow a traditional path was heavy on him. But Arsalan held on to his dream, proving that with passion and hard work, even the wildest dreams can come true.
5: Unbelievable! Absolutely unbelievable!
6: Arsalan Ash is the real deal. That dude is the real deal.

0: यार टूर्नामेंट का सीन है कि सबसे जो पहली स्टेज है वो है कि आपने अपना ग्रुप पिक करना है आपका। मैं लास्ट 2 बार गया हूँ तो 4 ग्रुप होते हैं ए बी सी डी, तो मैं हमेशा ए में आ गया हूँ। मतलब ए
1: अच्छा
0: बहुत मतलब मुश्किल होता है, बहुत अंत की है मेरे लिए, तो मैं बी सी डी में से कुछ रख करूँगा। ए में लग सकता है ईजी भी हुआ मेरे लिए, बहुत ईजी भी हुआ, फिर भी ए में नहीं जाना। पहला तो मैंने इसलिए चला गया, मैं ए फॉर इस्लाम ए में,

0: तो डी पीछे से आ गया, कहता लांग भी उस साल भी आ गया, मतलब सारे टॉप के प्लेयर मेरे ही ग्रुप पे आ गए इस साल। मैंने कहा नहीं, मैंने फिर लास्ट टाइम वो लकी ड्रा हुआ था, लकी ड्रा में मेरा ये आ गया, एग्जाम में फर्स्ट रैंकिंग है, तो अब मैं खुद चेक कर सकता हूँ कि मैं किस ग्रुप में जाना चाहता हूँ।
1: Arslan Ash's journey was born from hardship. At a young age, he suffered the heartbreaking loss of his father, leaving his mother to raise him and his siblings alone.
2: इसके पापा तो रेलवे में थे, पेंशन ही आनी, उसमें क्या होता है कुछ, मैंने फिर घर में मेहनत करनी, सिलाई वगैरह करती थी।
3: तो मैं तो नहीं कमाता था, मैं तो था भी 12 साल का, और हम क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो तब वसाइल भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था घर में भी।
1: But from this struggle came an unexpected blessing. The dim glow of arcade screens became his escape. And in the game's pixels, he found a world where he was in control.
3: तो मेरे लिए ये हुआ कि मेरे लिए थोड़ा सा रास्ता खुल गया कि मैं ज़्यादा गेम खेलने लग पड़ा, ज़्यादा बाहर जाने लग पड़ा, ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ा, रात को टेंशन होती थी, हाँ 5 मिनट के लिए जाना, तो 5 मिनट के लिए पहले 5 मिनट बाद ही घर आना, अब तो 5 मिनट के लिए घंटे बाद घर आना, तो मसला नहीं।
2: पहले इसके पापा तो इधर दूर नहीं जाता, ज़्यादा करीब करीब ही रहना, इससे मैंने जाके लिया था, तो बस फिर बच्चे सवाद हो जाते, कहते कि अब कौन रोकने वाला, तो चुप करके निकल जाना। ये फिर इसकी त्वचा ही बहुत थी कि मैंने ये भी खेलनी है, मम्मा जो मर्जी कर लें, तो मैंने ये नहीं छोड़ी।
3: उस दिन उनको बहुत दुख हुआ था जिस दिन मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं है, और एक बंदा आप पे सारा कुछ लगा रहा है, सारा रात सलाइयाँ करके सब कुछ करके कि बंदा पढ़ ले और कुछ बन जाए अपनी लाइफ के अंदर।
2: मैंने कहा कल मामा मैंने ये करना, मैं कहा पढ़ लो तुम अच्छी तरह पढ़ लो, कुछ बन जाओ।
3: तब मैं दिल दिल में सोचा था कि मैं इतना पैसा कमाऊँगा इंशाल्लाह, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं प्राउड फील कराऊँगा मम्मा को, लेकिन वो कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं किस तरह यकीन, मतलब आप तसल्ली दे सकते हो लेकिन जब तक आप खूब करो ना तो यकीन नहीं आता। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने रिस्क लेना लाइफ के अंदर, मैंने फिर बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया, मैं कहा मुझे एक बार मौका दें आप, अगर मैं नहीं कर सका तो मैं जो कहोगी ज़िंदगी के अंदर वही करूँगा, अगर मैं नहीं जीत सका तो जैसे जैसे कहोगी वैसे ही करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा इसके अलावा, मुझे बस एक मौका ज़िंदगी में चाहिए अपने लिए।
1: The arcades became his safe place, turning his pain into strength, sharpening his skills against endless challenges.

0: It's day one of the Tekken World Tour Finals 2023. And what better place than the legendary Civic Theater? This historic venue sets the stage for an unforgettable show, where only one will emerge as the new champion.
1: First Tekken World Tour Finals on American soil. It is about to be amazing, and I hope you guys are ready for some good-ass Tekken. And if you've ever watched the TWT Finals, you know historically the LCQ is where the fire starts.
2: The C word to me is violence. This is, we are about to witness some beautiful chaos, you know what I'm saying?
0: As the last chance qualifiers begin, Arslan Ash steps in, still feeling the sting of last night's defeat. The last chance qualifiers offer players one final chance to grab the two remaining spots in the Tekken World Tour Finals. With top global and regional players already locked in, this is the last opportunity for competitors to fight for Tekken glory. Who will rise to the occasion? The crowd's energy is electric. Every match ignites excitement.
3: KO.
4: We always say it's a bloodbath, but this time, this is the last one ever for Tekken 7.
5: Oh,
4: and
5: yeah.
4: There are so many killers.
0: In a surprising turn,
6: I'm trying to make it the showtime.
0: Joe Crush, the opponent from the night before, wins the final match of the LCQ.
7: But oh my goodness, your LCQ champion, Paragon Joe.
8: Congratulations to Joe Crush on another awesome victory.
0: The crowd cheers as Joe's victory cements his rapid rise, while Arslan watches closely.
9: I don't know if it was like destined to, you know, like I just was winning. Like yesterday we played a practice tournament against Arslan. My first match, hard match was against Arslan and I, you know, won that. So I was like, wait, what's going on here? You know what I'm saying? Like. So, yeah, man, it's just, it feels crazy. Something's in the air, you know?
10: We thank you guys for staying up with us, watching from wherever in the world you're watching from. But we'll see you guys in the morning. Look forward to the violence and the chaos that is going to go down in these group stages. And we'll catch you guys tomorrow. Everybody be easy.
11: Yeah, Joe Crush qualified today. Today was LCQ in that. I don't have tension, but he's a young player. काफ़ी अच्छा खेलता है उसने हराया था लेकिन मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे पूल में वो आया तो मैं उसे हरा सकता हूँ लेकिन फिर भी थ्रेट तो है वो और मैं चाहूँगा कि मेरे पूल में वो ना आए क्योंकि मैंने बाकी सबके खिलाफ तो तैयारी की हुई है बहुत अच्छी तो देखते हैं बट कांग्रेचुलेशंस टू जोकर फॉर क्वालिफाइंग
0: Arslan Ash was always a risk taker constantly searching for new challenges he dared to dream beyond his city's borders While others saw gaming as a dead end, Arslan saw it as a way to greatness. Even when no one believed in him, he believed in himself.
11: मुझे याद है एक दफा फिर ना मैं इमरान बैठे गेमो सेंटर के बाहर तो मैं इमरान से कह रहा हूँ कि यार इमरान मुझे लगता है कि ना मैं यहाँ के लिए बनाई नहीं हूँ मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए बनाई नहीं हूँ यहाँ का लेवल और मेरे लेवल में बहुत फ़र्क है मैंने बाहर जाना है और मैं ना बाहर जाऊँगा और मैं जीतूँगा
12: पर तब हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे होते कि कोई अपनी टिकट खरीद के दुबई भी चला जाए
13: तो मैं इसकी बात पे यकीन नहीं किया लेकिन मैंने कहा शायद इसने अहम ही बात कर दी है लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके पास तो पैसे नहीं है ये कैसे जाएगा
0: He knew greatness wasn't defined by where you start. It's about how far you're willing to go.
11: हम जिस सेंटर में खेला करते थे उस सेंटर वाले आदमी से मैंने कहा कि ना मेरे पास तो पैसे नहीं है मैंने बाहर जाना है और तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो भी आता है उसे मैं हराता हूँ मैं जीतता हूँ तुम मेरे पे पैसा लगाओ कहता मेरे पास पैसा नहीं है मैं कुछ करूँ कह चलो मैं तुम्हारा पासपोर्ट बना देता हूँ तो 5,000 रुपया उसने लगाया मेरा पासपोर्ट बनवाया मैं उसके साथ ही गया उसने पासपोर्ट बनवा के दिया फिर एक बंदा था दानी भाई उससे मैंने कहा कि दानी भाई जीतेंगे तो आधे पैसे आपके आधे पैसे मेरे मुझे बाहर भेजो जैसे करके कहता कि 20,000 की स्टिक मंगवा के दी आर्केड स्टिक जिससे आप बाहर प्रोफेशनली खेल सकते हो तो पाकिस्तान में वाहिद मैं बंदा था पहला वाहिद बंदा था इसके पास स्टिक थी
0: It wasn't just a joystick. It was Arslan's magic wand through which he cast his gaming skills for the world to see.
11: टिकट मेरी दानी भाई ने कराई थी खर्चा वगैरह घर वालों ने दिया मुझे तो पहला टूर्नामेंट मैं गया ओमान में खेल पहली दफा ट्रैवल करा था जहाज में बैठा, काफ़ी घबराया भी, जब बोल रहा है नीचे आ रहा है पहले पहले दफ़ा। और ओमान में फिर मैं रुका, जो दानी बे के दोस्त थे कुछ, जहाँ पे आप देखा होगा बाहर जाते हो फैक्ट्री के लोग बैठे होते हैं, उन्होंने हॉस्टल बुक किया होता कमरा, वहाँ पे बैठे होते हैं साइडों पे, वहाँ पे मैं ठहरा, टूर्नामेंट खेलने गया, वहाँ पे मैं जीत गया।
0: Arslan's first win came easily. The competition in Oman wasn't tough, and the prize was only a modest gaming console. But within that small victory, Arslan saw something much bigger. FVC Major 2018 in Malaysia, a tournament where he'd face legendary Korean and Japanese players he'd only admired from afar. This wasn't just an opportunity. It was his moment to prove he could compete with the world's best.
11: मैं टूर्नामेंट पे गया, पहले दफ़ा कोरियंस को देखा, जापानीज को देखा, उल्सान को देखा, सबको मैं हरा रहा था। तो वहाँ पे जिंडिंग कोरियन टॉप प्लेयर है, वो आया, मैं इससे कहा, मैं कहा मिस्टर खेलो एफटी ना, एफटी खेला तो उल्टे सीधे करेक्टर ले रहा, मतलब इंजॉय कर रहा है कि हारा जीत रहा कोई मसला नहीं है।
0: In Tekken, FT stands for first to 10, meaning the winner is the first to win 10 rounds to claim the match.
11: मैंने किसी को कहा यार ये लोग सीरियस नहीं खेलते, कहते नहीं टूर्नामेंट में सीरियस खेलते, मैं कहा पता नहीं टूर्नामेंट में मिलता कि नहीं मिलता, ये मुझे मैंने इसको हराना है सीरियस करेक्टर लेके। तो उसने एडी लिया, एडी का प्लेयर था, उससे मैंने बहुत बुरा मारा, वो लोग परेशान हो गए कि जंडिंग ने

0: आईडी लेके हार रही है, कहते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, मैं कहा पाकिस्तान, तो वो मैप पे गूगल पे सर्च करना पड़ा पाकिस्तान है कहां पे, मतलब वो सुना है पाकिस्तान में भी गेम खेलते हैं.
1: फॉर द फर्स्ट टाइम द टेकन वर्ल्ड हर्ड द नेम पाकिस्तान एंड इट वाज अरसलान आश हु मेड इट हैपन.
2: हेलो, हाँ बस उठी हूँ मैं, तैयारी फुल है, और दुआ करना, मम्मा से भी कहना कि दुआ करें.
3: फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वन ऑफ द ग्रेट्स, वन ऑफ द गोट्स, वन ऑफ द बेस्ट हू एवर डू इट, प्लीज मेक सम नॉइज फॉर नी. Make some noise for Arslan Ash! The choices have been made, the groups have been filled, and you guys are about to see some good ass Tekken. And I know it's early, but make some noise!
1: Arslan Ash, ever the strategist, picked his pool wisely. No Nee or Atif Butt to face early on. The tension in the venue is intense as the round robin unfolds.
4: Final round. Fight.
1: The crowd's energy builds with each match. And Arsalan knows his moment is approaching. But how did a young boy from Lahore learn to handle such pressure? To find that answer, we must turn back time. Malaysia, 2018.
5: So Ulsan going with the white Kazumi and Arslan. I didn't realize their names are pretty similar.
0: अब मेरा मैच है, मैंने कहा इसको तो मैं हरा लूँगा. मैं स्टेज पे हूँ, उल्सान वहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, वो अपनी एलईडी पे, मैं अपनी एलईडी पे बैठा हूँ. मैं खेल रहा हूँ, मैं टांगे मेरी शेक करने लग पड़े. मैंने कहा मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं तो इस बंदे को हरा लूँगा. पहले मेरी ऐसे ऐसे करके टांगे बहुत ज़्यादा तेज थे, कांपने लग पड़ी मेरी टांग, और मैं नर्वस हो गया. मैंने कहा यार ये क्या फीलिंग है, क्यों, और वो रिलैक्स है, वही बंदा, वही गेम. एक दिन पहले उसको मैं जीतने नहीं दे रहा, बहुत ही मैं नर्वस था. उसने सेम गेम की, कोई प्लान चेंज नहीं था, लेकिन मैं हार गया. तो फिर पता लगा कि यार इंटरनेशनल स्टेज पर खेलना और किसी कोरियन या प्रो के खिलाफ खेलना, ये आपको एक्सपीरियंस से आता है. फिर मेरा मैच आ गया नोबी से, और नोबी के साथ भी सेम चीज़ हुआ, और फिर मुझे थोड़ी देर बाद जब मैं उससे भी हार गया ना, इस तरह बहुत लास्ट राउंड पे, लास्ट पॉइंट पे हार, तो मुझे पता लगा कि यार स्टेज की गेम और स्टेज का प्रेशर हैंडल करना और अपने आप को कंट्रोल करना, नर्व्स को कंट्रोल करना भी ये अलग गेम है. डजंट मैटर कि जितनी मर्ज़ी आप प्रैक्टिस करो, जितने मर्ज़ी आप अच्छे हो, जब तक आप स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाते, उसका प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते, यू आर नथिंग.
1: Arslan Ash, known for learning from his mistakes, has overcome early challenges. Yet, the heat is on in New Orleans as Ulsan dominates Group A, securing a top 8 spot in the finals. With Group B matches about to begin, all eyes turn to Arslan Ash to deliver. Arslan feels the weight of expectations. Every win counts, but the road ahead is long and tough.
6: Look at this Group B, man. We have the four-time EVO champion, Arslan Ash, in this group.
7: We have to our next match, which is going to be a run back for the ages,
6: oh
7: MYK.
6: My goodness.
7: We gotta see, you know, if Al is gonna sit down and play against Arslan Ash, who's the player that he's worried about?
6: Let's find out.
8: So, 日本の予選でも一番そのトーナメントで意識してるプレイヤー、確実にやはり上位に上がってくるプレイヤーだったんで、
1: the bright lights shine down and the crowd buzzes with excitement.
7: Pakistan, you already know, started playing with Tekken 6, best memory of Tekken 7, coming a double EVO champion, best result in TWT 2023.
1: It was a high stakes mirror match between Ao and Arslan Ash, both using Zafina and Kunimitsu, a character Arslan had owned into his secret weapon and good luck charm. Known for his mastery of female characters, choosing Kunimitsu seemed inevitable.
6: Favorite stuff from Tekken 7.
7: Ninja battle.
5: Kunimitsu, Sanjo desu.
7: At EVO, it just felt like a again, just momentum control.

0: completely in Arsenal Ash's favor. A lot of really, really just compact play too.
1: Oh my goodness.
2: Wow.
3: The pressure was building, and Arslan could feel it in every breath. But with a final blow, he claimed a victory in the first match. The crowd erupted, but beneath the cheers, this moment carried a deeper meaning.
0: For so many players on this tour, especially so many of the qualified...
3: In a male-dominated society like Pakistan, where heroes are often men, Arslan Ash broke the mold.
4: अपने वक्त में बड़ा फेमस हो गया था कि वो लड़कियों से खेलता है और उसका इवन लड़कों ने नाम रख दिया था कि अरसलान बच्चियों वाला
5: लव्स इस्तेमाल होता था बच्चियां वाला तो ये जो फीमेल्स करैक्टर खेलते थे ना मेल्स नहीं खेलते थे ये उनके लिए इस्तेमाल होता था
6: वो एक अजीब मेंटालिटी लोगों की थी तुम वो लोग बिस्ती फील करते थे क्या हम लड़कियों से हार रहे हैं
7: माशाल्लाह से पाकिस्तान में सबको अल्फा बनने की पड़ी रहती है तो यू नो अल्फा बॉयज हमेशा से मेल कैरेक्टर से खेलते हैं ठीक है तो वो ठीक है ना बॉयज को सूट भी करता है
6: और जो लड़कियों से खेलता था उस पे भी वो कहते थे तो बच्चे ना खेलने हैं मतलब समझ आ रही है आपको कि एक शेम होती थी क्योंकि और क्योंकि लोग उनसे खेलते नहीं थे लड़कियों से तो उनकी प्रैक्टिस भी नहीं होती थी उनके खिलाफ मतलब एक चीज़ आप करोगे नहीं तो उसके खिलाफ प्रैक्टिस किस तरह करोगे आप तो ये वजह थी कि मैंने उनसे खेलता गया और फिर मैं पाकिस्तान में जीता भी उससे जूलिया से फिर नीना से लीली से
4: क्योंकि उसको पता था कि लड़कियाँ इस गेम के अंदर बहुत तेज हैं लड़कों की नस्बत
8: फिर उनके पास प्लस फ्रेम ज़्यादा होते हैं उनके पास डैमेज ज़्यादा होता है यानी कि उनको टेकन में मेल की नस्बत जो है ना एडवांटेज ज़्यादा होता है वो इसलिए इनसे खेलते हैं
9: आई फील दैट दैट डेफिनेटली प्लेज अ पार्ट इन हाउ ही perceives not just himself but you know the sort of environment that he was brought around his mother was really back there to support him and he really reveres that sort of empowerment that came from her
10: ha zafina ka maine bataya tha maine kaha is character se khelo to wo jaise wo jab karti na ghoomti hai to wo bada acha mujhe laga na dekh rahi thi main isko khelte main kaha nahi ab ye naya character aaya to isse khelo
11: zafina ka maine pucha tha aap kyun khelte hain uske sath तो उन्होंने कहा था कि मेरी मम्मा ने कहा था ये आप इसके साथ खेलो ज़फीना के साथ
9: आई डोंट थिंक दैट यू नो लाइक यू कुड प्रोबब्ली एवर कम अप विद अ कैरेक्टर दैट्स फीमेल एंड अरसलान वुड नॉट ग्रेविटेट टुवर्ड्स दिस इज गर्ल्स गेम नॉट इट्स ऑल स्किल अरसलान ब्रेकिंग
0: रूल्स सो इन मच इट विल Arslan Ash, you know, ever since he picked up Zafina and then moved over to Kunimitsu, he really started like mastering the character, finding the intricacy. And the Kokoma, he kind of just plays whoever's cheap, right? So let's find out what Kokoma feels about his performance in the CWT so far.
12: 좀 긴장은 솔직히 많이 되는 것 같아요. 왜냐면 마지막 철권 세븐의 이제 무대이기도 하고 당연하게 이제 이 자리에 밟았으니까 어떻게든 뭐 살아남을 수 있을까라는 걱정도 되고.
0: Zafina from Arslan and Fang from Kokoma.
3: Arslan, now fully confident, dismantled Kakuma's defenses with precision, pushing himself closer to his ultimate goal. The crowd roared as Arslan won the match.
13: So far undefeated in group stage play.
3: He shook off the pressure, his belief growing stronger with each step forward. In this final showdown, Arslan Ash isn't just chasing victory. He's determined to take the top spot, and he won't settle for less.
6: I think मेरे ज़हन में बात डाल दी गई थी मेरी मम्मी ने इसको मैं कहूँगा कि फर्स्ट आना हमेशा ना मुझे रात को पढ़ाई भी करती थी काफ़ी ज़्यादा कि फर्स्ट पोजिशन लेकर आनी है तो वो मुझे बड़ी ट्रिगर की मतलब जब छोटा होता है बच्चा उसके आप जहन में जो भी चीज़ डाल देते तो वो इस तरह से सोचना पड़ता तो मेरी जो मैंटेलिटी थी थिंकिंग थी मैं पहले तो बता भी था कि फ़र्स्ट आना होता क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब आके होगा क्या तो वो मेरे जो अंदर थिंकिंग थी ना ये वाली तो वो डिवेलप होना शुरू हो गया कि फ़र्स्ट आना है हमेशा स्कूल के अंदर तो मैं स्कूल में फ़र्स्ट आना शुरू कर दिया पहले मैं सेकंड आता एक दफ़ा सेकंड आया था तो मम्मी को पसंद नहीं आया शायद कहती नहीं एक दफ़ा फ़र्स्ट आना क्योंकि खुद भी अपने स्कूल में हमेशा फ़र्स्ट आया करती थी तो वो भी क्या करती थी कि तुमने भी फ़र्स्ट आना
10: बस पेपर होने ना जब हमारी क्लास में तो खुशी होती थी कि मैडम ने कहा नाम लेना दीजा तो बड़ी खुशी होती थी कि खड़ा कर देना कि ये फ़र्स्ट आई है तो इसी तरह था कि बच्चे भी सार कामयाब हों तो माँ बाप तो खुशी होती है
6: तो इस तरह ही गेम में मुझे फिर फाइटिंग गेम में काफ़ी इंटरेस्ट आया क्योंकि उसमें फ़ाइट कर रहे हो इसमें जीत हो रही है किसी कोई हार रहा है तो वो चीज़ ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि यार जीतना है क्योंकि अगले को हराने का भी मज़ा आता था
3: Arslan Ash remains unstoppable in round robin. His momentum is undeniable. There's no turning back.
13: And Arslan Ash, 2-0 over Rife in
3: group His next
13: stage.
3: Big challenge loomed. Anakin from the USA.
0: Anakin representing Atlanta, Georgia.
3: Backed by the roaring support of the home crowd.
13: Representing his character on tour all year long.
3: Anakin fought bravely.
0: One today in this group stage to even give Arslan a loss.
3: But Arslan stayed calm, his focus unshaken. With sharp precision, Arslan broke through Anakin's defenses and claimed victory.
13: All victories in group stage for Arslan.
3: This win not only secured his top spot in the group, but also marked a historic moment. Arslan finishes the group stage on top.
13: As you know, he came into this event knowing that this is his last chance for Tekken 7 to be able to put a stamp on this event in particular. It's eluded him in the past, and he showed you he is ready.
3: An achievement he had never reached before in this TWT Finals history. As Arslan Ash advances into the top 8 from the winner's side, one question lingers in his mind. Will his ultimate rival Nee make it too? The fierce rivalry that began at the 2018 OUG tournament in Dubai is now reaching its peak in New Orleans.
6: I think aapko apni journey mein ek aisa rival milta hai jisko aap harana chahte ho har surat mein. Wo aapke liye kafi in a way kafi helpful rehta hai tak manzil tak pahunchne mein.
3: But defeating the very hero who inspired you is never easy.
6: 2018 December mein OUG ki baat hai, tournament ka naam OUG. To main stage pe hu, announce hua Nee versus Arslan Ash aaj hai. To main stage pe gaya, to same scene ho lapda. Meri taange ruke hi na. Main aise rukhu, meri taange aise ho jaye. Main matlab is tarah matlab literally is tarah shake kar rahi thi ki main khud nahi bata sakta. Bahut tezi se, bahut hi ajeeb feeling thi wali.
3: After struggling under pressure against Olsen and Nobi in Malaysia 2018, the thought of facing Nee seemed unrealistic. If he couldn't handle lesser-known pros, how could he take on the best? Desperate for one last chance, he pleaded with his first-ever sponsor, V-Slash, who was now on the verge of pulling out, just to get a ticket, relying solely on promises and prayers. But how could he possibly defeat the greatest of all time?
6: For manena himmat ikatthi ki ke nervous nahi hona jo bhi hai haar jaunga lekin main nervous nahi hona to main bahir gaya aur main ja ke na kind of meditation keh lo ya kuch bhi keh lo main aankhein band karke is par like ki maine bas jo bhi soch raha tha ki apni na energy collect kar raha tha ki jitni maine game aaj tak khele hai zindagi ke andar wo maine ummi ka bhi soch raha tha bahut zyada ki wo pressure tha tab pressure tha mere pe bahut zyada ki maine wo pressure और जो सी ए की जो फीस और सब कुछ मेरे जहन में आ रहा था कि मैंने वो सब चीज़ों को ना आज बदलना है मैंने उनको पे बैक करना है जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं दानी भाई जिसने वीज़ा में मदद की जिसने किसी भी तरह की मदद की मेरे और मैंने अपना नाम बनाना आज मेरे पास इसके बाद शायद मौका आए ना
3: But Arslan defied fate. Against all odds, he stepped up and conquered the greatest. The underdog had risen. The impossible was now his reality.
2: Six
6: rounds straight मार दिए मैंने और वो news बहुत viral की कि Arslan ने sixth round में को मार दिया straight नहीं एक भी match नहीं जीता.
3: In the grand finals, Arslan achieved the impossible, a fairy tale ending to an unimaginable journey.
2: 그 전에는 이제 좀 본 적이 없던 스타일이었어요. 왜냐하면 공격과 방어의 밸런스가 너무 좋았기 때문에.
3: In one night, everything changed. The quiet underdog from Pakistan dethroned the undisputed king, catapulting himself into the spotlight.
6: Twitter khola koi 1000 followers ho gaye badi ja rahe bade log follow kar rahe hain ki pakistan ki taraf se ek player aaya hai pakistan ka bhi koi naam hai youtube pe log mujhe kar rahe hain pehli dafa main youtube pe video saan lag padi aur mujhe pata nahi famous log markman jo ab evo pe jinka jo hai director sari ke kisne ko haraya hai pata nahi kahan se uth ke aa gaya pakistan se to wo cheez ko adjust karte karte 3-4 din lag gaye mujhe phir pakistan aaya logon ne badi wah wah ki ke tumne bada acha kaam kiya ye wo तो अब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा तो मैं नहीं को हराया फिर इमरान की मुझे कॉल आई मुझे अभी भी याद है मैं एयरपोर्ट पे था तो कहता है असलान तुम्हें याद है तुमने बात की थी पहले कि तुम हरा सकते हो नहीं को और मैंने कहा हाँ मैंने कहा था कहता है फिर तुमने आज ना पूरा किया और मैं उस वक्त वाकई रोया था उसकी बात सुन के कि हाँ मैंने एकदम ख्वाब देखा था एक कि मैं बाहर जाऊँगा और तुम्हें भी यकीन नहीं किया था मेरे में लेकिन कहता कि तुम्हें यकीन था अपने आप पे तुमने किया है काम
3: Now with the stage set for the ultimate showdown this is more than just a rivalry it's destiny Arslan Ash isn't only chasing a win he's chasing a dream only he dared to believe in
14: Look at this. This is the original Tekken 4 PlayStation. And Harada just signed it, one. And two, this is like the OG cases, bro. They're trying to get rid of physical media. So the fact that you have this, yeah. is actually, this is like an instant collector's piece now.
15: और भाई टेंशन कम हुई?
16: प्रेशर का बहुत टेंशन थी कसम से. अब आगे जो भी होगा अच्छा होगा लेकिन चलो पूल तो क्लियर किया.
3: As excitement and nerves soar, Arslan waits to see who will move forward from Group C and D.
17: Is the next one. But before we get there, we got a chance to talk to Atif about how he felt about this Tekken World Tour performance. Let's take a listen.
18: इस साल में जो काफ़ी ज़्यादा जो टूर्नामेंट खेल चुका हूँ मैं पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री में खेल चुका हूँ तो मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और
3: जो क्रश पुश्ड रेनिंग चैंपियन आतिफ बट टू द ब्रिंक Atif barely escaped defeat, keeping fans on edge. For the first time in a long time, Atif looked vulnerable. Against all odds, Atif Bhatt, the reigning champion, failed to secure his place in the top eight. Atif Bhatt narrowly escapes defeat against Joe Crush. Atif Bhatt's loss to Low High shocked the arena, but the real drama unfolded in a nail-biting tiebreaker. A match that would decide his future in the tournament. The atmosphere was tense, every move critical. Yet, in an unexpected twist, the strong contender fell short. Against all odds, Atif Bhatt failed to secure his place in the top eight.
6: To be very honest, मैं खुश भी था. मैं नहीं कहूँगा कि मैं बस sad ही था.
4: Pure gamer कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता. Game के अंदर वो उसके साथ compete ही करेगा.
6: क्योंकि वो वाहिद एक ऐसा player था जो कि मुझे हरा सकता था. अगर वो top eight में आ जाता, grand final में आ जाता, तो मैं खुश भी था. As a friend, मैं उदास भी था. तो feeling mixed ही थी. अगर मैं खुल के बात करूँ.
3: Meanwhile, Arslan's fierce rival Ni made it to the top eight. Though from the loser's bracket. Adding even more tension to their heated rivalry.
19: Looked like he's gonna be in there for tomorrow.
6: Aur Ni loser mein tha to isse achhi baat ho hi kah sakti hai. Wo to haar jata to mere taraf se main to dua hi kar raha tha ki Ni haar jaye. Aur main to chahta tha sab bhi haar jaye. Ab main jeet jao.
3: Many dismissed Arslan's early wins as luck, but he took their doubt as a challenge
6: kisi ne mere zehen mein baat dali thi ki tum nee ko jitna marzi hara lo jab tak usse tum big stage pe nahi haraoge main kaha big stage kya hai big stage kisi tournament ke grand final mein specifically evo ke grand final mein tum use haraoge tab tumhe log kahenge tum sabse strong player ho duniya ke andar
3: for a pakistani like Arslan Ash the biggest fight often happens off stage getting a visa. After endless struggles and near misses, He arrived in Japan just in time for his match. He fought through the loser's bracket, taking down top players. In the grand finals, he defeated Filipino Tekken legend AK, resetting the bracket and claiming victory. A win that shocked the world. But one question remained. Could he prove the world wrong by defeating me? At EVO USA, Arslan answered that question with unmatched skill. Defeating me to claim an unprecedented double victory. In a single year, he rewrote history, establishing himself as the undisputed king of Tekken.
6: Defeating me, of statement wo maine wahan pe apne liye create ki ke now I am the best in the world. Winning two EVOs in a year, abhi tak kisi ne kiya nahi tha life mein.
3: His dominance silenced skeptics who had called his earlier successes a fluke.
20: People were still saying it was a fluke for some reason. But after the second time, maybe third time, I was just like, okay, watch out for this guy.
21: So people calling it a fluke, that's just them not getting what they want from it. But me, I love to see how it develops and change up. So was it a fluke? I don't think so.
5: At first, I could see why people say maybe it's a fluke, because everyone loses and, you know, it was his first time being on the scene, so everyone expected, of course, Knee to win. But, you know, once he's done it consistently, and not even just beating Knee, beating everyone else, it's like, it's not a fluke, and he's just really good. So that's just what it is.
6: Bahut tweets thi. I don't know how much tweet, lekin main trend kar raha tha us waqt pure USA ke andar, Pakistan ke andar bhi. Pakistan mein koi third number pe, USA ke andar pehle number pe main trend kar raha tha us waqt. USA is massive. To wahan pe trend karna is a huge thing. Or EVO ki wajah se I was trending in USA. I was getting a lot of followers. Or log duniya ke jahan se bhi hain tweets kar rahe hain, phila rahe hain is cheez ko jitna phila sakte hain. Ab main Twitter se thoda familiar hone pada tha tab tak. Aur phir maine sajda kiya. Wo zindagi mein aaj tak kisi ne nahi kiya tha.
22: Paying respect. I love what I'm seeing there. Beautiful.
6: और वो वाली चीज़ बहुत वायरल गई. उस चीज़ों को लोगों ने बहुत पसंद किया. फिर लोगों ने सर्च करने लग पड़े, पाकिस्तान के बारे में सर्च होने लग पड़ी, इस्लाम के बारे में सर्च होने लग पड़ी, सजदा क्यों किया गया, अरसलान के बारे में सर्च होने लग पड़ी, स्टोरीज लिखी गई, आर्टिकल्स लगने लग पड़े, काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने कवर करना शुरू कर दिया. फैमिली तो बहुत ही हैप्पी थी, मम्मा तो बहुत ज़्यादा हैप्पी. जब मुझे मेरी चीज़ बहुत हैप्पी कर रही थी उस वक्त, ये मेरी मम्मा बहुत हैप्पी हैं कि मैं जीता हूँ, मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है. और सबसे अच्छी चीज़ तो इमोशनल भी है, काफ़ी इमोशनल है कि अभी हमने अपनी सिस्टर की शादी करनी थी. और इवन के मम्मा का जब इंटरव्यू करोगे वो भी आपको कहेंगी कि
10: ये जापान जब पहली दफ़ा जीता ना बड़ा टूर्नामेंट, तो उस वक्त वाकई हमें पैसों की भी ज़रूरत थी, बेटी की शादी भी थी, तो ज़रूरत भी थी हमें. तो उस वक्त वाकई इतना इमोशनल हो गए थे कि हम रोने लगे. ये जब जीता है ना, सिर्फ मैं है एक दो पॉइंट से था कि ये जीत जाए, बस एक पॉइंट रह गया था कि या वो जीता या ये वो जीते. तो माशाल्लाह दुआ भी की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसको कामयाब, यही वसीला हमारा कि अल्लाह ताला इसको बना दे.
6: हाँ, हमारे पास पैसे भी थे तो, और मैं जो 2 लाख जहाँ 2 लाख से सोरी ना शादी होती है और लग भी चुका था 2 लाख. तो पैसे उसके बाद बहुत आम सी चीज़ें थी अंबर के पास, मतलब आम से ज्वेलरी, आम सा पर्स, आम से कपड़े, सारा कुछ आम सा. तो अब शादी किस तरह करना है, तो शादी के लिए फिर उधार लेना पड़ना था. तो उधार दे कोई नहीं रहा था खानदान में.
10: तो बाहर कितने लोगों से पैसे मांगने के हमें मिले, लेकिन फिर मैंने कहा कि अल्लाह ताला ये जा रहा है ना, तो इसको हमारा वसीला बना दो.
6: लोग जिनसे उधार लेने जा रहे थे कि कैसे उतारेंगे मम्मा उधार, बेटा भी कुछ नहीं करता इनका, और अब उधार दे दे तो फंस जाएंगे. तो कोई उधार देने को तैयार नहीं था.
10: तब ये जीते जब, तो बस रोने लग गए थे कि खुशी से कि अल्लाह बेशक तो करीब हो के सुनता. अल्लाह कहते हैं तुम्हारी शहर से करीब हो, तो वाकई से सुना. फिर हम रोने लग गए. तो जाके मैं सजदे में गिर गई थी कि अल्लाह ने इतना करीब हो कैसे. वो मेरा इमोशन पहली दफ़ा जब मेरा एक्सपीरियंस. बाकी अल्लाह ने सुना था
6: और ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई मेरे लिए और मम्मा के लिए और अंबर के लिए कि मैं कर सका मैं जरिया बन सका अपनी इस बहन की शादी करने का
3: Arslan Ash's journey is a story of heart, determination, and unstoppable willpower. From humble beginnings, he rose to become the undefeated champion of Tekken, breaking every limit. But now, the weight of the world rests on his shoulders. He's just one title away from securing his legacy as the greatest Tekken 7 player of all time, if he wins the TWT Finals.
1: Arslan, big day. What are your thoughts?
7: बस प्रेशर में रहने की कोशिश नहीं कर रहा ना नॉर्मल जितना रह सके उतना वो है कि उस तरह का अच्छी गेम बाकी जो रहा अलग मंजिल हाँ रेडी हाँ मैं खुद तो रेडी नींद पूरी आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली होता है कि आपकी नींद पूरी है तो वो तो पूरी है कल परफॉर्म तो अच्छा किया काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया अभी आज का मैं लोहा इससे है वो काफ़ी अच्छा किया तो वो है उसके बाद उल्सा सारे कोरियन ही आए हैं छह तो कोरियन है एक जापानीज है उसके एक पाकिस्तानी देखते हैं क्या होता है
1: पाकिस्तानी अब आप ही हो खाली इस बार
7: हमेशा ऐसे होता है एक पाकिस्तानी होता है लेकिन वो जीत जाता
6: एक रात पहले मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि नी ने मुझे एक दफ़ा एडवाइस की थी मैंने पूछा कि तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रहती है प्लेयर से खेलने से पहले वो कहता है कि मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती है कि मैं प्लेयर की गेम वॉच नहीं करता उनका स्टाइल नहीं देखता मैं बस करैक्टर को देखता हूँ उनके मैंने पूछा ऐसा क्यों है कहता है क्योंकि जब लोग गेम इन रियल टाइम अपनी गेम चेंज कर लेते हैं तो आप सोच के कुछ हो जाते होता कुछ हो रहा है तो मुझे नी की बात काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने कहा मैंने लैब नहीं करना प्लेयर्स को देखना नहीं है मैं करैक्टर्स को लैब कर लूँगा अगले दिन मेरा मैच हो रहा है लोहा इसलिए लोहा के करैक्टर्स देख लेता हूँ उनके करैक्टर्स के मूव्स रिमाइंड कर लेता हूँ हर चीज़ लेकिन हाँ मैं स्पेसिफिकली लोहा को स्टडी नहीं करूँगा शाह होता है उन्हें गेम प्ले ही चेंज कर ले सारी की सारी
1: भाई ये तुम्हारे हाथ में क्या है
8: ये हैंड वॉल ये आप ठंडे हाथों से गेम नहीं खेल सकते लाइक अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो आप कंफर्टेबली रहते हो आपसे दुबते नहीं हैं बेटा तो हाथ का वार्म होना बहुत ज़रूरी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये मत ही गन नहीं बोलता मैं
23: Hi, this is Arslan Ash. I want to say thanks to Tekken 7. This game gave me everything, respect, money, fame. It means a lot to me. And I just want to say thanks again. I'm here because of Tekken 7.
24: To be honest, I want Arslan to take it. But Lohai has also been playing out of his mind. So it's between them two. And they're playing in the second match. So I don't know, man. I don't know.
3: The crowd buzzes with electric energy as Arslan Ash faces Lohai in a high-stakes battle. The tension is thick, and every move matters.
25: One of these two players will meet him there later on today, but which one will it be? Deal with this? Come from behind?
26: Oh, that is game number one for Lohai.
3: Lohai takes the first round, leaving everyone on the edge of their seats.
6: बहुत टफ चला गया था लोहाई वाला मैच पूरा का पूरा टॉप 80 इतना टफ था पर लोहाई का मैच पहला राउंड वो जीत गया तो आतिफ ने मुझे कहा था कि तुम ये ना लो नॉकटिस मैं नॉकटिस खेल रहा था और मैंने खुद भी कहा था मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ना लूँ मैं कुनी मिर्च से ले लेता हूँ क्योंकि मैं उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा तो आतिफ बस लाइक हाँ तुम उसके साथ खेलो कुनी मिर्च से और उसकी गलतियाँ देखो
3: In the second round, Arslan counters with precise attacks, breaking Lohai's defense. The crowd erupts as he claims the round.
21: Arslan looking good in that last game, and Knee comes up over
25: the stage. Oh my God!
21: Oh, I almost spit my water out, bro. You can't.
3: Knee, coaching Lohai from the sidelines, knows that defeating Arslan will clear his own path to the throne.
21: I did not. Oh my God! This is crazy, bro. Do y'all not understand? This is crazy.
3: Arslan lands a perfect combo, sealing the victory in a thrilling finish. The tension isn't just in the arena, it pulses through Lahore, where every move grips the hearts of fans.
7: Four days left, so I'm going to pray.

0: साथ खेलोगे आप?
1: अभी पुणे में सोल नौकरी और ज़फीना, नहीं ज़फीना का काफी लोगों को पता लग गया, लेकिन मैं नौकरी
0: और आप बता रहे थे ना वीक भी होगी ज़फीना।
1: हाँ नर्क भी होगा, पता है आपको, तो काफी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बाकी आपको कहाँ साथ है और देखते हैं आप।
0: और मानो भी साथ,
1: मानो भी वैसे तो जीतना है तो मानो ने जिताना, मानो मानो आपने जिताना, ठीक यही जिताएगी हमें, ठीक है।
0: मानो
2: Women have always played key roles in Arslan's life, from his mother to the iconic female Tekken characters. Now, Arslan welcomes two more important women, his wife and newborn daughter. Could they be his lucky charm?
3: हाँ, मैं बिल्कुल believe करता हूँ, क्योंकि मैं शादी के बाद दो ही वो जीत गया था, और शादी से पहले मुझे बड़ी अजीब सी बातें सुनने को मिलती थी जो कि मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आई थिंक दुनिया है तो आपको हर बंदे की बात नहीं सुननी चाहिए। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि शादी के बाद में आप उस तरह से नहीं खेल पाएंगे। इवन एक करेक्टर है गायल, तो वो जब जीतता है ना वो बोलता है कि तुम जाओ और शादी कर लो, मतलब गो एंड हैव बेबीज इस तरह करके बोलता है। जब शादी कर ली, जिम्मेदारियाँ आ गई, बेबी आ गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप गए, अब शादी वाले, अब पेरेंट बन चुके हो, घर बैठो, आप बच्चे पालो जाके, अब तुम तो चैंपियन तो कहीं कभी नहीं बनने वाले। लेकिन आप अभी देखेंगे रिसेंट वर्ल्ड के अंदर आप लोगों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मेसी, रोनाल्डो, उनके बच्चे हैं, लेकिन स्टिल दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टिग्मा है बिल्कुल कि ऐसा अगर हो गया, शादी हो गई तो आप जीत नहीं सकते। लेकिन मैं शादी के बाद दो चैंपियनशिप भी वो फिर जीता, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी, और बेटी रहमत होती है, तो मेरी बेटी काफ़ी मुबारक रहेगी।
2: Arslan Ash challenges outdated beliefs. While the drama escalates as Ni enters the harsh losers bracket to face Rangchu.
4: There you go, there you go.
5: But what if you like the legend himself, the Brian player himself? Make some noise if you would like Ni to take the set.
4: All right, here we go. Already blocking. Big one. Oh! Staying alive to fight another round. Is this the shift that he needed? Is this the momentum that he needed?
5: Oh!
4: What's gonna happen?
5: Oh, he's not,
4: I can't believe it!
5: Oh my god.
4: What happened there? All right, guys, here we go. Final game between these two. Give it up for them.
5: Yo, make some noise for these guys, bro. The Tekken is going so high right now. Let's be careful. It has to be careful.
2: In a shocking twist, Rangchu eliminates Ni in loser's top eight, sending shockwaves through the arena.
4: Is moving on, and Ni.

0: क्या हुआ बे, ऐसा क्यों देख रहे? स्टार्टिंग में साइबर कैफे जाते थे तो लिखते थे कि क्रेजी डांस, बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था मेरे को कि लाइक पीपल आर जस्ट लाइक फ्लाइंग लाइक यू नो इन द एयर, दे आर लाइक ट्विस्टिंग एंड टर्निंग एंड लैंडिंग ऑन देयर फीट. वीडियो के थ्रू इंट्रोडक्शन हुआ मेरा, मैंने सब डॉक्यूमेंट्री में बोला ये चीज, वीडियो के थ्रू इंट्रोड्यूस किया.
1: हाँ, वीडियो में ही देखता था वो. हाँ. वीडियो में देख के ही किया है सब.
0: वो रिसर्च किया मैंने बहुत ऐसा कि कहाँ से आता है, लाइक क्या टाइप के, लाइक यू नो क्या एनवायरमेंट क्या रहता है, बैटल क्या होती है. और मैं बहुत प्रैक्टिस करता था ब्रो, लिटरली मैं दिन रात एक करता था.
1: कॉलेज जाता नहीं था. कहाँ जाता, घर से बैग लेके जाता, कॉलेज जाता ही नहीं है
0: ब्रो. मैं एक एक माले पर चढ़ के बैक फ्लिप मार देता था.
1: हाँ.
0: लिटरली She's never seen me dancing. Only time that she saw me dancing was 2019.
2: This is Red Bull BC One, the most prestigious B-boy, B-girl stage on the planet. You know the flying
0: machine. That was the first time when ever any Indian stepped on the world finals. मेरे लिए भी बहुत अलग प्रेशर था कि भाई मेरी मम्मी देख रही है. हाँ, इतने सारे लोग
1: सब लोग बोलते थे ना अभी, मतलब फ्लैग मशीन आ रहेगा अभी. तो मैं आजू बाजू में सब बैठ, मैं बोली मेरा बेटा है. बोला आपका बेटा है? मैं बोली हाँ मेरा बेटा है. बोले ये जो है ना इधर का स्टार तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे बेटे की वजह से ये सब हो रहा है.
0: मेरे को लगता है कि वो गिफ्टेड था कि वो ब्रेकिंग मेरे को मिला और एक्चुअली मैं ऐसा मीडियम बन गया कि और उसको अलग लेवल पे लेके यार अपने कंट्री में.